भोर सुहानी सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। दोस्तों, जिंदगी एक सफ़र की तरह है, जहां कुछ लोग राहों में मिलते हैं और कुछ याद बनकर साथ चल पड़ते हैं, और ऐसे में कई बार वो हमारे साथी भी बन जाते हैं और कई बार दर्द भी दे जाते हैं। और ऐसे समय में गीत हमारे साथी होते हैं, जो हमारे सफ़र को खूबसूरत भी बनाते हैं और तसल्ली भी देते हैं। चलिए, इसी श्रृंखला में आपको सुनवाते हैं अगला गीत।

जी हाँ दोस्तों, अब हम अपने अंजाम की तरफ आ चुके हैं। प्रोग्राम भोर सुहानी आप सुन रहे हैं और अब चलते चलते खूबसूरत से गीत के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। उम्मीद है कि आज के ये गीत आपके दिल को सुकून और चेहरे को मुस्कुराहट दे गए होंगे। तो अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि संगीत ही वो एहसास है जो दिलों को हमेशा करीब रखता है। तो चलिए सुनते हैं चलते चलते ये गीत और सुरभि को दीजिए इजाज़त।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: 103.6 Real FM. ഇശൽമാലയിൽ ഇനി പീർ മുഹമ്മദും സിബലയും ചേർന്ന് ആലപിച്ച ഗാനം കേൾക്കാം.

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: विशन ट्रस्ट हॉस्पिटल करियर क्विज സമർപ്പിക്കുന്നത് വിഷൻ ട്രസ്റ്റ് ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ ഹൈസ്കൂൾ റോഡ് പേരാമ്പ്ര. ഡോക്ടർ രോഹിത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീം ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച ചികിത്സ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति

0: शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबूधाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एएमसीए निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है और ये सत्र के सीधे प्रसारण के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीआई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय पूर्णिमा सामंत कड़ाकोटी। Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan,

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मन मीत आपके लिए स्वागत करती हूं मैं कुसुम। ख्वाबों से न जाओ कि अभी रात बहुत है, पहलू में तुम आओ कि अभी रात बहुत है, कट जाए यूं ही प्यार की बातों में हर एक पल, कुछ जागो जगाओ कि अभी रात बहुत है। बहुत प्यारा सा गीत आपके लिए मैं लेकर आई हूं फिल्म एक फूल दो माली से आशा भोसले की आवाज में, आइए सुन।

दूर दूर तक फैली हुई हैं रात की बाहें, रोशनी के फूल जुगनुओं की तरह चमक रहे हैं, मोहब्बत के ख्वाब पलकों पर महक रहे हैं, हसीन ख्याल धड़कनों से लिपटे हैं। बहुत हसीन है ये पल, ये लम्हे, ये रात। बस एक इल्तिजा सी कांपते होठों पर आकर रुक सी जाती है, वो इल्तिजा गीत बनकर कुछ कह रही है। क्या कह रही है, आइए सुने इस गीत में।

देखिए, आपका जी किधर गया ये तो आप ही जाने, लेकिन ये जो जी है ना, इसे ज़रा संभाल कर रखा कीजिए, क्योंकि सबके प्यार की अलग अलग परिभाषाएं हैं। आपके दिल की क्या परिभाषा है ये तो आप ही जाने। मेरा अपना मानना है कि जैसा जिसका दिल वैसा उसका प्यार, और जैसी जिसकी फितरत वैसी उसकी मोहब्बत। प्यार गलत नहीं होता प्रिय, परिभाषाएं गलत हो जाती हैं। वैसे पर मुझे बहुत ही प्यारा गीत याद आता है फिल्म किस्मत का, आइए आप भी सुनिए।

अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म ये हम नहीं जानते। बस इस दास्तां में हम उलझे रहते हैं और उलझे रहते हैं मेरे दिन और रात। देर तक रोशनी रही कल रात, मैंने ओढ़ी थी चांदनी कल रात। कल रात यादों की आगोश में सो गई, फिर भी आज की रात में है बाकी सी कल रात। ये आती जाती रातें जाकर भी कुछ कुछ चिपकी सी रह जाती हैं। थोड़ी खिड़की

थोड़ी पर्दे से, थोड़ी सिरहाने से और याद बनकर महकती रहती हैं। फिर जब अगली रात लौट कर आती है ना, तो फिर पूछती है, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक

0: भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: नब्बे वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
2: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
2: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत मेरे मनमीत के सफर पर आज मैं हूँ आपके साथ कुसुम। किसी ने क्या खूब लिखा है कि इश्क को एक उम्र चाहिए और उम्र का कोई एतबार नहीं। लेकिन उम्र को दरकिनार करते हुए साहिल लुधियानवी साहब क्या खूब लिखते हैं फिल्म वक्त में, आइए हम सभी सुनें।

अजबी का जो मतलब होता है वो होता है बहुत खूबसूरत चेहरे वाली, और जो ग्रह है शुक्र ग्रह उसके तरह मतलब चमकते माथे वाली जो महिला होती है, सुंदर चेहरे वाली, उसे ये कहा गया है जोहरा जबी। वैसे तुझ पे कुर्बान मेरी जान कहना कितना आसान है ना, काश कि इतना आसान होता निभाना भी। कहने वाले तो क्या क्या कह जाते हैं, देखिए अगले गीत में क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं हम तुम युग युग से ये गीत मिलन के गाते रहे हैं, आइए हम

फिल्म मिलन का यह गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। आइए सुनते हैं अगला गीत, फिल्म साहिब बीवी और गुलाम से गीता दत्त की आवाज में।

इसी गीत के साथ ही गीत मेरे मन में यहीं तक कुसुम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। फिलहाल इस चैनल पर अब आपके लिए है समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा

0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एएमसीए निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को कार्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है और ये सत्र के सीधे प्रसारण के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरार हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की घोषणा कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएंगी। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में कल हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Purnima Samant Kadakoti. Prime Minister Narendra Modi has arrived in the Netherlands for the second leg of his 5-country tour. He was received by the Dutch Foreign Minister Tom Berendsen at the airport. During the visit from 15 to 17 May, the Prime Minister to hold bilateral talks with Dutch Prime Minister Rob Jetten and to call on their majesties, the King and the Queen. Today, PM Modi will address the Indian community and meet CEOs of leading Dutch companies. Several important agreements are expected to be signed, particularly in the fields of semiconductor chips and AI, where the Netherlands stands as global leader. The visit of PM carries significance beyond bilateral ties and is expected to shape broader India-EU relations following the recently concluded India-Europe Free Trade Agreement. Prime Minister Narendra Modi has reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security.

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 57 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा मैं हूं राखी आपके साथ।

अंधा कानून फिल्म का गीत आपने सुना आशा भोसले और एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। शनिवार की छुट्टी के वो सुकून भरे पल जब घर की दीवारें भी जैसे अपनापन महसूस कराने लगी हैं, न भाग दौड़ न किसी काम की जल्दबाजी, बस आराम से बीतते हुए पल और मन को हल्का कर देने वाला सुकून।

जानी दुश्मन फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। वर्मा मलिक ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। वाकई घर में सुकून से बिताया गया वीकेंड पूरे हफ्ते की थकान उतार देता है। कुछ पल आराम, अपने लोगों का साथ, मनपसंद गीत और बिना किसी जल्दबाजी के बीतता दिन, यही तो असली राहत है। ऐसा लगता है जैसे भागती हुई जिंदगी थोड़ी देर के लिए ठहर गई हो और दिल धीरे से कह उठे, अब चैन मिला।

चोर पुलिस फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, इसे लिखा निदा फाजली ने और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। शनिवार का दिन जब घर में सुकून से बीतता है तब महसूस होता है कि थकान सिर्फ शरीर में नहीं मन में भी जमा हो जाती है। पूरे हफ्ते की भागदौड़, जिम्मेदारियां, समय की चिंता और हर पल कुछ न कुछ सोचते रहने की आदत, इन सब के बीच इंसान खुद से ही दूर हो जाता है। फिर आता है ऐसा शांत सा दिन जहां सुबह की चाय जल्दी जल्दी नहीं पी जाती, जहां घड़ी बार बार नहीं देखनी पड़ती, जहां मन करे तो पुराने गीत सुन लो, मन करे तो बस खामोशी से बैठे रहो। ऐसे पल हमें याद दिलाते हैं कि खुशी हमेशा बड़ी चीजों में नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ा सुकून अपने घर के एक शांत कोने में बैठकर बिना किसी चिंता के बस चैन से सांस लेने में होता है।

फ्री लव फिल्म का गाना आपने सुना महेंद्र कपूर की आवाज में। असद भोपाली ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 12:33 और ठीक 50 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

दूसरा आदमी फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने। सच में अच्छे गीतों में एक अजीब सी ताकत होती है। बाहर चाहे कितनी भी घनघोर गर्मी क्यों ना हो, लेकिन मनपसंद गाने कानों में पड़ते ही माहौल कुछ हल्का लगने लगता है। गर्म हवाएं और थका देने वाला मौसम, इन सब के बीच जब कोई सुरीला गीत बज उठे तो जैसे मन को ठंडी छांव मिल जाती है। कभी पुराने मधुर गीत, कभी हल्के फुल्के मुस्कुराते नगमे, तो कभी दिल को छू लेने वाली धुने, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं करते बल्कि मन को राहत भी देते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे गाने हमारे मूड को समझते हों। थके हुए दिन में वही गीत थोड़ी ताजगी दे जाते हैं। उदासी में मुस्कुराते हम मुस्कुराने से लगते हैं और गर्मी से चिड़चिड़ाए मन को भी ये गीत शांत कर देते हैं।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

वक्त हुआ है 12:46 और ठीक 30 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत

बाबू फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने। पुराने गीतों की बात ही कुछ और है। उनके शब्द, उनकी धुन और उनकी सादगी दिल को छू जाती है। वो सिर्फ कानों में नहीं बजते, सीधे दिल में उतरते हैं। शायद इसीलिए कहते हैं कि कुछ गीत मौसम नहीं बदलते, लेकिन मौसम सहने की ताकत जरूर दे देते हैं। और सच कहें तो गर्मी की लंबी थकाऊ दोपहर और रात, अगर इस समय अच्छे गीतों का साथ मिल जाए तो ये गर्मी के दिन बिताना आसान हो जाए।

प्यासा सावन फिल्म का गाना आपने सुना, सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की आवाज में। गुलशन बाबरा ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। वक्त हुआ है 12:59 और ठीक 10 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण के लिए नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसेन ने किया। 15 से 17 मई तक चलने वाले इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और राजा तथा महारानी से भेंट भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौते होने की भी संभावना है। व्यापार के दृष्टिकोण से नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार है और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है। प्रधानमंत्री ने होर्मूज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई

0: इसराइल पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर उपकर कर या अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को कार्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनल पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। परीक्षाएं दोपहर बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएंगी। जम्मू कश्मीर में चल रहे नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत पहले महीने में पुलिस ने 806 लोगों को गिरफ्तार किया और 724 मामले दर्ज किए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। 188 रन के लक्ष्य को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही हासिल कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi has arrived in the Netherlands for the second leg of his five-country tour. He was received by the Dutch Foreign Minister Tom Berendsen at the airport. During the visit, the Prime Minister to hold bilateral talks with Dutch Prime Minister Rob Jetten and to call on their Majesties the King and the Queen. Today, Prime Minister Modi will address the Indian community and meet CEOs of leading Dutch companies. Yesterday, during his UAE visit, Mr. Modi reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recently attacks on UAE. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has congratulated Anita Orban for her appointment as the Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Hungary. In a social media post yesterday, Dr. Jaishankar said he looks forward to working together to strengthen India-Hungary relationship and the India-EU strategic partnership. National Testing Agency NTA has announced a re-examination of NEET UG 2026 on 21st of next month. In a social media post, the agency has requested candidates and parents to rely only on the official channels of NTA. NTA said candidates can update their present address and choice of first and second examination cities as per their preference from yesterday to Thursday. Exams will be held between 2 p.m. to 5:15 p.m. Union Home Minister Amit Shah has said that India had set a national goal to achieve a drug-free India by 2047 under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. Delivering the R. N. Kao Memorial Lecture in New Delhi yesterday, the

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 59 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने मैं हूं राखी आपके साथ।

आराम फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया अनिल बिस्वास ने।

ठोकर फिल्म से आपने ये गीत सुना तलत महमूद की आवाज में। मजाज लखनवी ने इसे लिखा और संगीत दिया सरदार मलिक ने। ये वो एहसास है जब दिल में इतनी बातें हों कि शब्द भी साथ छोड़ दें। कभी यादें बेचैन करती हैं, कभी खामोशी, और ऐसे में पुराने गीत जैसे हमारे दिल की तरफ से बोलने लगते हैं। रात तन्हा हो, हवा चुप हो और कोई पुराना नगमा धीरे से बज उठे तो दिल अपने सारे राज खुद ही सुनाने लगता है।

सोने की चिड़िया फिल्म का गाना आपने सुना, तलत महमूद और आशा भोसले की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या ना करूं। मोहब्बत भी कितनी अजीब चीज है, दिल अपने आप किसी की तरफ खिंचता चला जाता है और इंसान बस महसूस करता रह जाता है। कभी ये सुकून बन जाती है,

कभी एक मीठी सी बेचैनी। फिर भी लोग मोहब्बत से दूर नहीं जाना चाहते, क्योंकि कुछ एहसास दर्द देकर भी दिल के सबसे करीब होते हैं।

फुटपाथ फिल्म का गाना आपने सुना, तलत महमूद की आवाज में। अली सरदार जाफरी ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। शामे गम की कसम, आज गमगी हैं हम, आ भी जा आज मेरे सनम। इस गीत में इंतजार, उदासी और मोहब्बत तीनों एक साथ महसूस होते हैं। ढलती शाम, खामोश फिजा और किसी अपने की कमी। कुछ पुराने गीत सिर्फ चुने नहीं जाते, इनको जिया जाता है, समझा जाता है और महसूस किया जाता है।

दिली नादान फिल्म का गाना आपने सुना तलत महमूद की आवाज में। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया गुलाम मोहम्मद ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 1:32 और ठीक 9 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

भरोसा फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया रवि ने।

मोहर फिल्म का गाना आपने सुना तलत महमूद की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने। कुछ यादें दिल को सुकून देती हैं और कुछ चुपके से दर्द से भी गहरा दर्द देती चली जाती हैं। लेकिन सच यह है कि जो दिल के करीब होते हैं उनकी याद कभी पुरानी नहीं होती।

पठान फिल्म का गाना आपने सुना तलत महमूद की आवाज में। खावर जमा ने इसे लिखा और संगीत दिया जिमी ने। सूनी सी राहों में तेरी याद का मौसम, हर मोड़ पे लगता है कि तुम मिल ही जाओगे। दिल आज भी चुपके से यही कहता है, कुछ दूर नहीं हो तुम, बस आवाज दो तो चले आओगे। कितनी ही दफा चाहा कि भूल जाएं तुम्हें, लेकिन ये दिल हर बार तुम्हारा नाम ले बैठता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिछड़कर भी हर धड़कन में साथ निभाते रहते हैं।

ये रास्ते हैं प्यार के। इस फिल्म से आपने ये गाना सुना आशा भोसले की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया।

रवि ने। ये रास्ते हैं प्यार किए, चलना संभल संभल के। मोहब्बत सिर्फ मुस्कुराहटों का नाम नहीं, कभी इंतजार, कभी तन्हाई, कभी अनकही बातों का सिलसिला भी है। फिर भी लोग इस राह पर चल पड़ते हैं, क्योंकि दिल को एक उम्मीद हमेशा रहती है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा होगा जो हमारे जज्बात समझ लेगा।

छाया फिल्म का गाना आपने सुना तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया सलिल चौधरी ने। इतना तो मुझसे ना प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कभी इस शहर कभी उस राह गुजरता हूं, अपने ही ख्यालों में कहीं खोया रहता हूं। मेरे पास ठहराव का कोई घर नहीं, बस यादों की धुंध है और तन्हा सफर। लेकिन जब तुम्हारा जिक्र होता है ये भटकता मन कुछ पल को ठहर जाता है, लगता है जैसे सूनी शाम में दूर कहीं कोई दीपक जल उठा हो।

किनारे किनारे फिल्म का गाना आपने सुना तलत महमूद की आवाज में। न्याय शर्मा ने इसे लिखा और संगीत दिया जयदेव ने। वक्त हुआ है 1:56 और ठीक 17 सेकंड। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण के लिए नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसेन ने किया। 15 से 17 मई तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और राजा तथा महारानी से भेंट भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना है। व्यापार के दृष्टिकोण से नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार है और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है। प्रधानमंत्री ने होर्मूज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश

यात्रा पर उपकर कर या अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गंगटोक के मानन केंद्र में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉ डी पुरंदेश्वरी समिति की अध्यक्ष होंगी। समिति में लोकसभा से 18 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को कार्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोपों में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। 188 रन के लक्ष्य को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन में होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 58 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई। मैं हूं राखी आपके साथ।

नमक हराम फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। रात सुरमई हो और साथ में सुरीले गीत हो तो जैसे थका हुआ मन भी धीरे धीरे मुस्कुराने लगता है। खामोश रात, हल्की ठंडी हवा और कहीं दूर बजता कोई पुराना नगमा, बस यही पल दिल को सुकून से भर देते हैं। ऐसी रातों में यादें भी मीठी लगती हैं, बातें भी धीमे धीमे दिल में उतरती हैं और वक्त जैसे कुछ ठहर सा जाता है।

राजपूत फिल्म का गाना आपने सुना, किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला, एक ऐसा एहसास जहां इंसान कहीं भी चला जाए कुछ यादें उसका हाथ कभी नहीं छोड़ती। भीड़ हो या तन्हाई, दिल के किसी कोने में कोई पुरानी आवाज, कोई मुस्कुराहट, कोई अधूरी बात साथ चलती रहती है। कभी ये यादें सुकून देती हैं तो कभी चुपचाप आंखें नम कर जाती हैं।

देवता फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। इसे लिखा गुलजार ने और संगीत दिया आरडी बर्मन ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री

3G की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 2:29 और ठीक 27 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

0: शायद तू क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के

द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले और शरद कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें लंबी बातों की जरूरत नहीं पड़ती। दिल अपनी सबसे गहरी बात अक्सर बहुत सादगी से कह देता है। कभी किसी की मौजूदगी सुकून बन जाती है, कभी उसकी यादें खामोशी में भी साथ चलती रहती हैं। मोहब्बत का रंग भी अजीब होता है, उसमें शिकायतें भी होती हैं, इंतजार भी। दो लफ्जों में कही गई बात कभी कभी पूरी उम्र की दास्तान बन जाती है।

यादों की बारात फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले और रफी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। कुछ लोग हमारी जिंदगी में इतनी खामोशी से आते हैं कि हमें एहसास भी नहीं होता कि हम कब अपना दिल हार बैठे। फिर उनकी हंसी में अपना सुकून मिलने लगता है, उनकी आवाज दिन भर की थकान मिटा देती है और उनकी यादें हर खामोश पल को भर देती हैं। मोहब्बत शायद दिल चुराने का नाम नहीं, बल्कि किसी के दिल में इतनी गहराई से बस जाने का एहसास है कि उसके बिना हर खुशी अधूरी लगे।

डॉन फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। अनजान ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने।

जवानी जाने मन 1982 की फिल्म नमक हलाल का एक बेहद लोकप्रिय और मस्ती भरा गाना है। इसे आशा भोसले ने गाया, संगीत बप्पी लाहिरी का था और इस फिल्म में परवीन बाबी की स्टाइल और स्क्रीन प्रेजेंस ने इसे और यादगार बना दिया था। इस गाने में 80 के दशक की डिस्को धुन, चुलबुलापन और चमकती हुई फिल्मी दुनिया का पूरा रंग दिखाई देता है। जवानी जाने मन सुनते ही वही पुराना दौर, जगमगाते सेट और

अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए समाचार। समाचारों के बाद अर्चना सचदेवा होंगी आपके साथ लेकर प्रोग्राम हमराही। इसी के साथ राखी को इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण के लिए नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेनसेन ने किया। 15 से 17 मई तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और राजा तथा महारानी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। व्यापार के दृष्टिकोण से नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार है और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है। प्रधानमंत्री ने हुर्मूज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया है। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। हॉर्मोन को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर उपकर कर या अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य

0: सिंधिया भी गंगटोक के मानन केंद्र में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉ डी पुरंदेश्वरी समिति की अध्यक्ष होंगी। समिति में लोकसभा से 18 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कराने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएंगी। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया है कि वाशिंगटन में हुई वार्ता के एक और दौर के बाद इसराइल और लिबनान 45 दिनों के लिए युद्ध विराम बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने कहा कि 2 दिनों की सफल वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है और जून में आगे की बातचीत होगी। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। 188 रन के लक्ष्य को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं कल केरल, माही, दक्षिणांतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi has arrived in the Netherlands for the second leg of his 5-country tour. He was received by the Dutch Foreign Minister Tom Berendsen at the airport. During the visit, the Prime Minister to hold bilateral talks with Dutch Prime Minister Rob Jetten and to call on their Majesties the King and the Queen. Today, Prime Minister Modi will address the Indian community and meet CEOs of leading Dutch companies. Yesterday, during his UAE visit, Mr. Modi reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
2: Hormuz ko free, open aur safe banaye rakhna. ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: Government has imposed a special additional excise duty of 3 rupees per litre on export of petrol. Ministry of Finance has notified about it. The special additional excise duty on diesel exports have been brought down to 16 rupees 50 paise per litre from 23 rupees. The special additional excise duty on aviation turbine fuel ATF has also been reduced to 16 rupees from 33 rupees a litre. The revised rates will remain in force for the next fortnight beginning today. There has been no change in the existing excise duty rates for petrol and diesel for domestic consumption. Advocating for greater transparency in the West Bengal Assembly, Chief Minister Shivendu Adhikari called for live broadcast of question hour, debates, bills and budgets. He said, people of the state have every right to see what the elected members are doing in the Assembly and that can only be ensured through live streaming of the session. He declared, the House belongs to the opposition, assuring that despite the government's majority, opposition members will have ample opportunity to speak. The statement came during a special session where BJP legislator Ratindra Basu from Cooch Behar South was unanimously elected Speaker of the 18th Legislative Assembly. NTA said candidates can update their present address and choice of first and second examination cities.

रात के 3:11 हुए हैं। हम राही कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, प्यार एक खूबसूरत सा एहसास है जो शब्दों से परे है, और जब किसी से प्यार हो जाता है तो स्थिति कुछ ऐसी सी हो जाती है।

गीता दत्त और मन्ना डे की आवाज में फिल्म जिद्दी से अभी आपने गीत सुना। आंखों से दूर है पर दिल के पास है, आंखों से दूर है पर दिल के पास है, जिंदगी के सफर में तू ही एक खास है, तुमसे कब मुलाकात होगी बस यही एक आस है।

सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाज में फिल्म जौहर महमूद इन गोहा से अभी आपने गीत सुना। हमारे दास्ताने इश्क का बस इतना ही फसाना है, हमारे दास्ताने इश्क का बस इतना ही फसाना है, एक मीठा सा दर्द है और एक बेनाम जमाना है।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फिल्म तीसरा कौन से अभी आपने गीत सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं फिल्म प्रेम रोग से लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज में।

दिल दिया है तो निभाना भी जरूरी है, दिल दिया है तो निभाना भी जरूरी है, यूं ही किसी को अपना बनाना भी जरूरी है। वफा की राह में हर मोड़ पर मुस्कुरा कर साथ चलना भी जरूरी है। आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म जमी आसमां से ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार।

मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म यादों की बारात से अभी आपने गीत सुना। तुम्हारे साथ ने ही तो जिंदगी को सजाया है, तुम्हारे साथ ने ही तो जिंदगी को सजाया है, मैंने तुमको अपना और तुमने मुझे अपना बनाया है। ना जाने कितना प्यार है तुमसे कि अब तो हर धड़कन में बस तुम्हारा ही साया है।

आयशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म वीर भीमसेन से अभी आपने गीत सुना, तुम्हारा इश्क ही काफी है, तुम्हारा इश्क ही काफी है, तमाम उम्र यही आसरा ही काफी है, जहां कहीं

0: कहीं भी मिलो, मिल के मुस्कुरा देना, खुशी के वास्ते ये सिलसिला ही काफी है। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म सच्चा झूठा से ये गीत।
1: यूं ही तुम

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग
1: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
0: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फिल्म फर्ज से ये गीत आप सुन रहे हैं। इसी के साथ ही हमराही कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और कुछ ही पलों में सुनिएगा समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण के लिए नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेनसन ने किया। 15 से 17 मई तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और राजा तथा महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। व्यापार के दृष्टिकोण से नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार है और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है। प्रधानमंत्री ने होर्मूज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया है। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर उपकर कर या अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गंगटोक के मानन केंद्र में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉ डी पुरंदेश्वरी समिति की अध्यक्ष होंगी। समिति में लोकसभा से 18 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की घोषणा कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएंगी।

सरकार ने पेट्रोल की निर्यात पर 3 रूपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया है। वित्त मंत्रालय ने आज इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 23 रूपये प्रति लीटर से घटाकर 16.50 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन टरबाइन ईंधन पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 33 रूपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से शुरू होने वाले अगले पखवाड़े तक लागू रहेंगी। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। 188 रन के लक्ष्य को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अरुणिमा।

सुबह के 4:11 और 14 सेकंड हुए हैं। अरुणिमा कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह की इस बेला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हर दिन एक नया सवेरा होता है और जिंदगी में परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, फिर भी हमेशा खुश रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

केजे येसुदास की आवाज में अपने पराये फिल्म से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, प्यार अगर सच्चा है तो उसमें किसी को भी झुकने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उस प्यार में समर्पण है और जहां समर्पण की भावना हो वहीं पर प्रेम है।

आशा भोसले, किशोर कुमार और साथियों की आवाज में फिल्म उमंग से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, रिश्तों में अगर मतलब आ जाता है तो वो रिश्ते हैं ही नहीं, वो रिश्ते बस सिर्फ नाम के ही हैं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अरुणिमा में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं, चितचोर फिल्म से केजे येसुदास की आवाज में।

दोस्तों, प्रकृति की तो बात ही अलग है। पानी, धरती, नदियां, हवा, पहाड़, आसमां, सभी ही बहुत अच्छे लगते हैं। और जितना आप प्रकृति के साथ जुड़ के रहेंगे, उतना ही आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

किशोर कुमार की आवाज में फिल्म दूर के राही से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जिंदगी में प्यार ही है जिससे हम किसी के दिल में उतर जाते हैं, और प्यार से ही हम किसी दुखी मायूस व्यक्ति को खुश कर सकते हैं।

लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में फिल्म क्रांति से ये गीत आपने सुना। दोस्तों, अब चलने का वक्त भी आ गया है और हम चाहते हैं कि आप जहां भी हों हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। और इसी के साथ ही अरुणिमा से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और कुछ ही पलों में सुनिएगा समाचार, परंतु उससे पहले हमारी अंतिम पेशकश आपके लिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म उपकार से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेनसेन ने किया। 15 से 17 मई तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। व्यापार के दृष्टिकोण से नीदरलैंड्स भारत का एक प्रमुख आर्थिक साझेदार है और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा तथा खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्चस्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री ने अमीरात पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने उनकी अबूधाबी की यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित एक रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर 3 रूपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया है। वित्त मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी की है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 23 रूपये प्रति लीटर से घटाकर 16.50 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन टर्बाइन ईंधन पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 33 रूपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। संशोधित दरें अगले पखवाड़े तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कराने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांगोले और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गंगटोक के मानन केन्द्र में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया कि वाशिंगटन में हुई वार्ता के बाद इसराइल और लेबनान 45 दिनों के लिए युद्ध विराम बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिकोट ने कहा कि 2 दिनों की सफल वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है और जून में आगे की बातचीत होगी। इसराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकवादी समूह के बीच अस्थिर युद्ध विराम रविवार को समाप्त होने वाला था।

100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भोर सुहानी।

सुबह के 5:11 और 13 सेकंड हुए हैं। भोर सुहानी कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सुबह का समय भक्ति और शांति के लिए सबसे अच्छा समय है, तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस आनंदमय भजन से, जो गाया है अनुराधा पौडवाल और हरिहरन ने।

दोस्तों, सुबह के इस शांत वातावरण में भजन सुन के आपको ज़रूर आनंद आया होगा। और आइए अब अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म बेकसूर से।

दोस्तों, ज़िंदगी का ये सफ़र हंसते हंसते कट जाए तो क्या बात है। और अगर कोई भी परेशानी हो परंतु फिर भी आप खुश रहते हैं तो वो परेशानी भी झट से दूर हो जाएगी।

नितिन मुकेश और साधना सरगम और साथियों की आवाज में अभी आपने गीत सुना फिल्म खून भरी मांग से। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। भोर सुहानी में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं मुकेश की आवाज में फिल्म अनोखी रात से।